कि जो तूलानी होने के एतबार से कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा है, 286 आयात पर मुश्तमिल, दो जुज़ कुरान के मुकम्मल और तीसरे जुज़ का भी कुछ हिस्सा, आधे से कुछ कम, इस पर सूरतुल बकरा मुश्तमिल है। बहुत सारे अहकामात और चंद दास्तानें, बिलखुसूस बनी इसराइल की दास्तान, इसी तरह हजरत आदम का खल्क किया जाना और उनका ज़मीन पर उतारा जाना, इसी तरह इंसानों के तीन गुरोह, एक जिसे कुरान मजीद मुत्तकीन या मोमिनीन कहता है, दूसरा गुरोह इनके मद्दे मुकाबिल जिन्हें कुरान मजीद ने कुफार कहा, और तीसरा गुरोह के जिसका तज़किरा नस्बतन तफसील के साथ आगाज़ में ही किया गया, जो ज़्यादा ख़तरनाक गुरोह है वो है मुनाफिकीन, कि जिनका ज़ाहिर कुछ और होता है लेकिन बातिन कुछ और होता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से इस सूरह मुबारका का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान रहीम अल्लाह के नाम से, आपको याद होगा रहमान आम रहमतों वाला, रहीम ख़ास रहमतों वाला। आम रहमतें वो हैं जो हर एक के लिए हैं जब तक वो दुनिया में मौजूद है, और ख़ास रहमतें वो हैं कि जो अल्लाह दुनिया में उनको देता है कि जो अल्लाह की तरफ रग़बत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जाना चाहते हैं। और दुनिया में हम इनका नाम तौफीकात रखते हैं, अच्छाई की तौफीकात, नेकी की तौफीकात, ये उनको मिलती हैं कि जो खुद भी उस तरफ जाना चाहें और अल्लाह से तलब करें। और आखिरत में अल्लाह की जो रहमतें होंगी वो इन्हीं लोगों के साथ मखसूस हो जाएंगी, और जो मुजरिम होंगे फिर वो जैसे दुनिया में इस्तफादा किया करते थे आम रहमतों का जो सबके लिए आम थी, रोज़े क़यामत उनसे छीन ली जाएंगी। और फिर कुरान मजीद ने वजाहत के साथ बयान किया है कि उनके लिए ना ऐसा खाना होगा जो भूख मिटाए उनकी, और ना ही ऐसा कोई पीने की चीज़ होगी कि जो उनकी प्यास ही बुझा दे, और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियों के नतीजे में उसके अजाब का शिकार होंगे कि जो बड़ी लंबी मुद्दतों पर मुश्तमिल होगा। इस सूरह बकरा की पहली आयत, एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है इस को सूरतुल फातिहा में अलग से आयत शुमार किया जाता है, लेकिन सूरतुल फातिहा के अलावा बाकी तमाम सूरतों में सिवाय सूरह तौबा के जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, बाकी तमाम सूरतों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद वाली जो आयत होती है उसको मिलाकर पहली आयत शुमार किया जाता है। मसलन यहाँ पर क्या कहेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, ये पहली आयत है, बिस्मिल्लाह समेत पहली आयत होती है। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, ये पहली आयत होगी, इंशाल्लाह वाज़े है। सिर्फ सूरतुल फातिहा में अलग से नंबर इसको दिया जाता है आयत नंबर एक का, लेकिन बाकी सूरतों में आप देखेंगे कि पहली आयत का जो नंबर होता है वो बिस्मिल्लाह के अगले जुमले के बाद होता है। तो बिस्मिल्लाह समेत वो पहली आयत है।

हर सूरा की समझी जाती है। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अलिफ लाम मीम, इन्हें कहा जाता है हुरूफ मुकत्तआत। मुकत्तआत जमा है मुकत्तआ की, और मुकत्तआ कहते हैं ऐसी चीज को जिसे काट दिया गया हो। कत करना यानी काट देना, मुकत्ता यानी जिसे काट दिया गया हो। हुरूफ मुकत्तआत यानी वो हुरूफ जिन्हें काट दिया गया है। किससे काट दिया गया है, यानी वो लफ्ज की शक्ल में नहीं है। आप देखिए, तवज्जो फरमाए कि ये जो हुरूफ तहज्जी है अरबी जुबान के, अलिफ बा ता सा और इसी तरह आखिर तक, इनमें से हर हर्फ का एक अपना नाम है। मसलन अलिफ को अगर लिखा जाए तो सीधी लकीर मिसाल के तौर पे लिखी जाती है, लेकिन अगर अलिफ का नाम लिखा जाए तो वो तीन हरूफ पर मुश्तमिल है, अलिफ लाम और फा। तवज्जो फरमा रहे, ये हरूफ जब आपस में मिलते हैं तो लफ्ज बनता है, आपस में जब मिल जाते हैं, तरकीब हो जाते हैं, तो फिर इन हुरूफ से क्या चीज बन जाती है, अल्फाज बन जाते हैं। जैसे अल्लाह, जैसे रसूलुल्लाह, ये हुरूफ मिले हुए हैं। अगर इन हुरूफ को लफ्ज की शक्ल में ना रखा जाए और हर एक को अलग-अलग पढ़ा जाए, मसलन फर्ज करें हम रसूल को इस तरह से पढ़े, रा सीन वाव और लाम, रसूल एक और चीज थी। जब हमने इनको काट दिया, हुरूफ को काट दिया, क्या मतलब, जो लफ्ज की शक्ल थी उसको काट दिया, अलग अलग कर दिया। इस वजह से इन हुरूफ को जो कुरान मजीद की बाज सूरतों के आगाज में आए हैं, इनको हुरूफ मुकत्तआत कहा जाता है, क्योंकि इनमें से हर हर्फ को अलग अलग उसके नाम से पढ़ा जाता है। अलिफ लाम मीम, हा मीम, काफ हा या आइन साद और इसी तरह दीगर जगहों पर हर एक को, हर हर्फ को अपने नाम से पढ़ा जाता है। लिहाजा इन्हें क्या कहते हैं, हुरूफ मुकत्तआत। तो ये तो बात इंशाल्लाह यहां तक वाजे होगी। इनका माना क्या है, इन हुरूफ के मानी के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं। कहा गया कि ये हुरूफ मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला की सिफात की तरफ इशारा करते हैं, बाज ने कहा ये अल्लाह ताला के अस्मा की तरफ इशारा करते हैं, बाज ने कहा ये दुनिया में कौमों की जो मुद्दत है उस मुद्दत की तरफ इशारा करते हैं, बाज ने कहा कि ये हुरूफ ये जो शुरू में आता है मसलन अलिफ लाम मीम, ये सूरह बकरा का दूसरा नाम है, यानी ये जो सूरतों के शुरू में हुरूफ मुकत्तआत आए हैं ये दर हकीकत इन सूरतों के नाम है। जैसे अल बकरा नाम है, उसी तरह एक नाम क्या है, अलिफ लाम मीम, इन सूरतों के नाम। आइम्मा अथार से भी रिवायात मुख्तलिफ आई हुई हैं इसमें, लेकिन मैं एक आपकी खिदमत में के जो सबसे ज्यादा इनके बारे में करीने कयास बात लगती है वो आपकी खिदमत में मैं पढ़ता हूं कि हमारे आयमा के फरामीन में ये है कि अन्नहा इन्नहा मिनल मुतशाबिहात, ये जो हरूफ मुकत्तआत हैं ये मुतशाबिहात में से हैं, अल्लती इस्तअसर अल्लाह बिइल्मिहा, ये वो है कि जिनका हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है,
وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهَا

अलामतों की हकीकत क्या, क्या होने वाला है, क्या मुराद है, क्या मैसेज है, इसको अरबी जुबान में कहते हैं तावील। हकीकत क्या है? तावील किसी चीज को उसकी हकीकत की तरफ पलटाना। बिल्कुल साफ साफ वाजे और रोशन कर देना। कुरान ने जिन्हें आयात मुतशाबिहात वैसे कहा हुआ है, वहां पे ऐसा नहीं है कि पूरी आयत आपके सामने हो, उसके अल्फाज हो, और मुतशाबे का मतलब ये हो कि कुछ भी समझ में नहीं आता। इससे समझ में आ रहा होता है लेकिन बिल्कुल वाज़े तस्वीर नहीं बन सकती, बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? मसलन देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि खुदावंद आलम साहिब अर्श, अर्श का मालिक है। अब अर्श किसे कहते हैं अरबी जुबान में? उस तख्त को कहा जाता है जिस पे बादशाह बैठता है, जहां से बैठ के वो अहकामात सादिर करता है। उसकी हुकूमत की, उसकी कुदरत की अलामत को उसका अर्श कहते हैं। लिहाजा उर्दू में भी कहते हैं फलान वजीर ने बादशाह का तख्त उलट दिया, तख्ता उलट दिया यानी बगावत कर दी, तख्ता उलट दिया यानी उसकी हुकूमत खराब कर दी, खुद हुकूमत पर कब्जा कर लिया। अब अल्लाह ने अपने इक्तदार को उसकी तरफ जब इशारा करना था, कुरान मजीद में लफ्ज़ अर्श इस्तेमाल किया, लेकिन आया इस अर्श से हमारे जहन में वो उसी किस्म का तख्त आना चाहिए जिस पे बादशाह बैठता है फिर उठ के चला जाता है? नहीं, अल्लाह ताला ऐसा है नहीं कि वो उठ कभी उठ कभी खड़ा हो, कभी बैठा हो, कभी लेटा हो। ये हालतें हमारे लिए, खुदा के लिए नहीं है। नहीं वो जहान कोई मादी दुनिया है, मादी जहान है, जहां लकड़ी का या किसी मेटल का, धात का बहुत बड़ा तख्त बनाओ जिस पे अल्लाह ताला बैठ के अहकामात मसलन कुन के हुक्म सादिर करता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन उस आलम की बातों को, इस आलम, उस लामहदूद दुनिया की बातों को जब इस महदूद दुनिया में बयान करना था और जुबान भी वही इस्तेमाल करनी थी जो लोगों लोग बोलते हैं और लोग समझते हैं, तो उन अल्फाज की वजह से बाज़ोकात इंसान के जहन में कोई नक्स आ जाता है। लेकिन अल्लाह ने उस नक्स को दूर करने के लिए फरमा दिया कि ये जो अल्फाज मैंने अपने बारे में इस्तेमाल किए, अगर इन अल्फाज से तुम कोई ऐसी चीज तसव्वुर कर लो कि जो नक्स रखती हो, ऐब रखती हो, तो याद रखो कि अल्लाह की जात लैसा कमिथलिही शय, खुदावंद आलम किसी चीज, कोई चीज उसकी मिसल नहीं है कि तुम मवाजना कर सको कि इसकी तरह अल्लाह होगा, इसकी तरह खुदावंद आलम होगा। खुदावंद आलम किसी चीज की तरह नहीं है, न किसी इंसान की तरह, न किसी नबी की तरह, न किसी इमाम की तरह, न किसी वली की तरह। लैसा कमिस्लिही शय, वो अहद यकता है। यकता किसे कहते हैं? जिससे मिलती जुलती कोई चीज नहीं होती। यकता यानी ऐसा एक के जिसके बाद दो नहीं होता, तीन नहीं होता, गिनती का हिस्सा ही नहीं है, अलग से। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो वो जो तशाबुह आता है वहां पर कुरान ने फरमाया कि गलत लोग क्या करते हैं कि इन मुतशाबिहात में से इनके पीछे जाते हैं और इनमें से फितना करने की कोशिश करते हैं, फितना बर्पा करने की, मसलन आवाम के अकायद को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनको जो वो आवाम के जो खुद कुरान मजीद से दूर है। आपको मिसाल देता हूं, एक बंदा वो स्टेज पर आकर मसलन खतीब हो, खतीब की शक्ल में हो, जाकिर की शक्ल में हो, आलिम की शक्ल में हो, शायर की शक्ल में हो, किसी शक्ल में हो, इस लिबास में हो, इस लिबास के बगैर हो, कुरान से दूर कौम को बेवकूफ़ बनाना एक चुटकी का काम है और ये उस कौम की सजा है अल्लाह की तरफ से। जिसने खुदा की किताब की बेकदरी की उसकी सजा है कि वो फ्रॉडियों के हाथों जलील ख्वार हो और समझे कि हम तो बड़े बुलंद मकामात पर फायज हैं अल्लाह के पास, कौम यहूद की तरह आरजुओं का शिकार हो,
بے بنیاد

आरजुओं का, वो भी तौरात से कट कर समझते थे कि ये जो हमें सुना रहा है, ये जो कह रहे सिर्फ तुम जनती हो, ये बड़ा हमें जबरदस्त बात बता रहा। आप तवज्जो कीजिए, हैरत है इस बात पर कि जब ऐसी बातें होती है कोई मर्द उठ के खड़ा नहीं होता, और यह मर्द में औरतें भी शामिल हैं। बाज़ औक़ात औरतें काम ऐसे करती हैं कि मर्दों वाले काम होते, तवज्जो फरमा रहे। अब आप देखिए, मसलन एक शख्स कहता है, उससे कोई बंदा सवाल करता है कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात की जा सकती है या बात नहीं की जा सकती। देखिए, एक है तवस्सुल, हम कहते हैं अहले बैत अथार को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाते, ये अपनी जगह पर, लेकिन आप इसमें ऐसा इफरात करें कि आप कहें कि नहीं अल्लाह से डायरेक्ट बात ही नहीं हो सकती, तो आप कुरान की वाज़े आयात का इनकार कर रहे हैं। आप सूरतुल फातिहा में जो बोलते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खिताब कर रहे हैं खुदा से, या बीच में वसीला कौन सा है? ठीक है, अब एक बंदा यहां पे आके कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि, यहां से मुराद मिंबर है, ये जगह नहीं है, कोई मिक्सअप ना हो जाए, आके कहता है कि लोग मुझसे सवाल करते हैं कि तुम, हम अल्लाह से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, उनको मैं ये जवाब देता हूं कि तुम्हारी शक्ल है अल्लाह से बात करने वाली। अब ये एक इंतहाई अहमकाना और जाहिलाना बात है। क्यों चुप करके बैठते हैं सामने लोग? इसलिए कि उनको डर होता है इतने बड़े बंदे के सामने बोल के हम जन्मी ना हो जाएं। और क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए कि अल्लाह की किताब से कटे हुए। अब सुनिए कुरान मजीद क्या कहता है। कुरान मजीद फरमाता है वकाल रब्बुकुम उद्उनी अस्तजिब लकुम, सादा सिंपल तर्जमा, और तुम्हारे रब ने कहा मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यहां पर बीच में है कोई वसीला? मैं अर्ज करूं, इससे कोई यह ना समझे कि वसीले का इनकार हो रहा है, वो अपनी जगह पर है। तवज्जो फरमा रहे, वो भी कुरान की आयत है कि ये ऐ रसूल, अगर जब इन्होंने अपने आप पे जुल्म किया था आपके पास आते, ये खुद भी अपने गुनाह की माफी मांगते, और वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी इनके गुनाह की इस्तगफार करता, लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा, वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये कहना कि तुम्हारी शक्ल है अल्लाह से बात करने की, अल्लाह ऐसा इस कायनात का बादशाह है कि जिसको ना ऊंग आती है ना नींद, उसको कोई दिन में पुकारे कोई रात में पुकारे, उसको कोई नेक पुकारे उसको कोई बद पुकारे, वो सुनता है। वकाल रब्बुकुम उद्उनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझे पुकारो, उद्उनी मुझे पुकारो, डायरेक्ट मुझे पुकारो। या अल्लाह क्या कहते हैं आप जब सलवात पढ़ते हैं क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा, ये अल्लाहुम्मा या अल्लाह की दूसरी शक्ल है, इसके बीच में कोई वसीला है? इस तरह ना जुल्म करें लोगों के साथ खुदा से दूर करके। अगर अल्लाह को डायरेक्ट पुकारने वाली शक्ल नहीं थी तो रसूलुल्लाह बता के जाते कि हमारे अलावा या अल्लाह बोलना हराम है। कोई कह सकता है या अल्लाह बोलना हराम है? सलवात पढ़ना भी हराम हो जाएगा। अल्लाहुम्मा या अल्लाह की दूसरी शक्ल है। अरब दो तरीके से पुकारते हैं अल्लाह को, या अल्लाह या अल्लाहुम्मा, ये हुम्मा या है, आप अरबी जबान जाके पढ़े। फिर खुदाबंद आलम फरमाता है रसूलुल्लाह से, यानी कुरान मजीद में, ऐ रसूल व इदा, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें कि अल्लाह कहां है, आप देखिए खुदा क्या फरमा रहा है, फइन्नी करीबुन, तो मेरे बंदों को ऐ रसूल बताएं कि यकीन जान ले वो कि मैं बड़ा करीब हूं उनके, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं जवाब देता हूं उसका। आप कहते हो कि तुम्हारी शक्ल है अल्लाह से डायरेक्ट खिताब करने वाली,

क्या करना है सिवाय जन्नत की टिकट के और दुनिया में अपनी मनते मुरादे वो भी दुनिया की ख्वाहिशात पूरी करने के, उसके अलावा इस दीन की कोई जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है? कोई नहीं। ये कौन सा इस्लाम है? ये वही इस्लाम है जिसे कुरान कहते हैं ये तुम्हारी आरजुएं हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अपनी मोहकम दलील मोहकम ला के बताओ अगर तुम सच्चे हो। तुम कहां से बातें घर के लाते? अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून, क्या तुम्हारे पास अल्लाह की किताब के अलावा कोई और किताब है जहां से तहकीकात करके ये रिजल्ट निकाल के लाते हो? कुरान से दूरी बर्बादी का सबब है दुनिया में आखिरत में। क्यों? वाकयन रोंगटे, कम से कम इंसान के फिक्री रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए जब वो कुरान में यह आयत देखे कि मेरा रसूल जिसकी मुझे शफात का इंतजार है वो अल्लाह की बारगाह में कौम को सामने खड़ा करके कह रहा होगा या शिकायत कर रहा होगा इस मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ दिया था, अल्लाह राजी होगा इस शिकायत से कि नाराज होगा? जो लोग शिफात शिफात का इतना शोर मचाते हैं वो शिकायत का क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताते? क्योंकि बताने से सामने वालों को मजा नहीं आता और दावतें नहीं मिलती और आपकी खिताबत की रेटिंग्स ऊपर नहीं जाती। इसलिए कुरान गायब है, इसलिए कि अल्लाह तो बेतकल्लुफ है, अल्लाह तो किसी से तकल्लुफ नहीं करता। अल्लाह कहता है मैंने जब अपनी किताब दी और अपने नबी भेजा बनी इसराइल के दरमियान, ए बनी इसराइल याद करो, ये आयत तब उतरी थी जब रसूलुल्लाह मदीना आए थे, फरमाया ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत को और जो अहद तुमने किया उस अहद को अब पूरा करो, इस नबी पर ईमान लाओ जिसका इंतजार कर रहे हो मदीना में। जब उन्होंने नहीं किया अल्लाह ने फरमाया हमने इन पर जिल्लत और नादारी दे मारी। जिस कौम को अल्लाह कह रहे फज़लनाकुम अलल आलमीन, हमने उस जमाने में तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी थी, उसी कौम को नाफरमानी के बाद क्या फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कना, और फरमाया कि जिस नबी का इंतजार कर रहे थे उसके आने के बाद उसका इनकार कर दिया, फलअनतुल्लाह अलल काफिरीन, काफिर कह दिया इनको कि क्यों नहीं तुमने अपना अहद पूरा किया अल्लाह से किया। बहुत बहुत बड़ा घपला हुआ है, बहुत बड़ा घपला हुआ है कुरान को निकालकर, और उस घपले का सद्दबाब करने की जरूरत है। दूसरों को छोड़ दे, हर बंदा अपने आप से शुरू करे। जब आप कुरान की एक आयत वाजे पढ़े उसके बाद कोई बड़े से बड़ा मौलवी कहे ये मुराद नहीं है वो मुराद है, वो तुम ना मुराद हो, ये जो सामने लिखा हुआ यही मुराद है, अल्लाह से बेहतर कोई मुराद नहीं समझा सकता। जो बातें बिल्कुल वाजे हैं कुरान में, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला के युकीमून सलाह, नमाज कायम करते हैं। अब आप अरबी की लुगत में जाकर देखें युकीमून किसे का कायम करना क्या होता है, आपको बड़ा अच्छा आइडिया मिल जाएगा। आप कोई कहे कि नाम ही पढ़ो तो कुछ नहीं होता, आप सूरतुल मुद्दसिर में जाके देखें कि जब जहन्नमी जन्नतियों से जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे क्या चीज तुम्हें जहन्नम में लेकर आई है, वो पहला जवाब रीजन सबब बताएंगे जहन्नम में जाने का, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजियों में नहीं थे, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे। अब आगे जाके अल्लाह कहते हैं इन लोगों को जो ये काम नहीं करते थे, फमा तनफअहुम शफाअतुश्शाफिईन, इन लोगों को बेनमाज को शफात करने वालों की शफात कोई काम नहीं देगी, कोई नफा नहीं देगी। इसके बाद किसकी जरूरत है अल्लाह की बात पर अपनी बात करे आकर और कहे तू नमाज ना भी पढ़ मौला तेरी शफात करेंगे, मौला तुझ पे लानत करेंगे शफात नहीं करेंगे, और उस पे डबल लानत करेंगे जिसने हजार बंदा लाख बंदा गुमराह कर दिया, बेनमाज बना दिया, नमाज को एक हल्की चीज बनाकर पेश किया। तवज्जो फरमा रहे, ये आपको जितना वाजे अल्लाह की किताब से मिलेगा किसी खतीब और किसी से नहीं मिल सकता, कोई नहीं बता सकता, सबसे बेहतरीन खतीब और आलिम और समझाने वाला खुद अल्लाह है। अगर ऐसा ना होता तो कभी हमारे पाक आइम्मा हमें यह ना कहते

कुरान जानने वाले कुरान की आयात से मानूस बड़े बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। अभी बहुत इब्तदाई सतह पर जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अफराद जहमत कर रहे हैं, मसलन मफाहीम कुरान का सिलसिला शुरू हुआ कुछ दोस्तों का, यहाँ पर जो पढ़ कर आए थे हौज़ा इल्मिया कौम से, उन्होंने मसलन यहाँ शुरू किया, आपके लाहौर में उनका दफ्तर है, वो एक बुनियादी तौर पर कुरान के अल्फाज को बताने की एक उन्होंने कोर्स बनाया हुआ है। बहुत बहुत पीछे हैं, अभी बहुत पीछे हैं, इसलिए कि शैतान जानता था और अल्लाह ताला ने कुफार का एक जुमला कुरान में कोट किया, नकल किया, इस जुमले को पल्ले से बांध ले, फरमाया वक़ाल अल्लज़ीन कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र कर दिया, नहीं आना चाहते इसकी तरफ, मुनकिर हो रहे हैं, वो उन्होंने ये कहा ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को मत सुनना, इस कुरान को ना सुनना, वलगौ फी है, खुद भी ना सुनना और जब पढ़ा जाए तो बीच में शोर शराबा डाल देना, ऐसी हरकतें लगव से है, वलगौ लगव से, बीच में लगवियात शुरू कर दो ताकि दूसरे भी ना सुन सके, नतीजा क्या निकलेगा, लअल्लकुम तगलिबून, तब तुम गलबा पाओगे इस पर। अगर कुरान सुना गया तो जो कुरान सुन लेगा कुरान गलबा पाएगा, फिर तुम गलबा नहीं पा सकते, लिहाजा ऐसा रोला डाल दो तुम कि कुरान मजीद ना सुने कोई, ये कुरान जो सुनेगा वो तो फिर हिलेगा, वो तो फिर अल्लाह का कलाम उस पर असर करेगा, लिहाजा जितने बंद बांधने हैं शैतान ने वो इसके आगे बांधने हैं कि ये कुरान और लोग ये आपस में कनेक्ट ना हो। लिहाजा आप देख लें, आपको कई शिया मिलेंगे, कई सुन्नी मिलेंगे उलमा की शक्ल में, वो तुम्हारी तो औकात ही नहीं है तुम कुरान पढ़ सको। मैंने 40 साल इल्म दीन हासिल किया है, अब भी मैं डरता हूं कुरान में से कोई चीज समझने से, तुम्हारे ऊपर इन्ना लिल्लाह है भाई, तू 40 साल के बाद हौजे में तो अभी भी डरता है तू कुरान को हाथ लगाने से, तो फिर तुमने किया क्या, तूने अल्लाह फरमा रहा है कसम खाकर वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, अल्लाह कह रहे मैं कसम खा रहा हूं मैंने इसको नसीहत के लिए आसान कर दिया, तुझे शर्म नहीं आती, तू कहते 40 साल के बाद मैं डरता हूं, और उसको शर्म और अकल नहीं आती जो सुन के मान भी लेता है। इतना मुश्किल है कुरान, 40 साल आगा ने लगाए हैं फिर भी कुरान मजीद को बड़ी मुश्किल से हाथ लगाते हैं, तो हाथ टूट क्यों नहीं गए फिर, तवज्जो फरमा रहे, अल्लाह के साथ मुकाबला करते हैं, वलकद यस्सरनल कुरान, कुछ तो है जिसको अल्लाह कह रहे हैं मैंने आसान किया, और फिर पुकार रहे फहल में मुद्दकिर, है कोई जो इसमें से नसीहत ले, आगे बाबा जी आगे बैठ जाते हो, तुम्हारी औकात है तो कुरान पढ़ने वाली, लगव है। इस किस्म की जब परस्ती शुरू हो जाए अल्लाह के मुकाबले में गैर अल्लाह की बातों की, तो फिर क्या होता है, फिर कुरान ने बताया हुआ है कि इन यहूदियों और मसीहियों ने उलमा को अपना रब बनाया हुआ था, यानी जिस तरह रब की बात मानी जाती है, जब पता चल जाए ये रब ने कहा है तो फिर चुप करके माननी होती है, ये सिर्फ रब के लिए है किसी और के लिए नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने आलमों को वहां बिठा दिया कि आयत कुछ कह रही है वो कुछ कह रहा है, और आयत को साइड पे कर देता है, उसको रब बना लेता है। कामयाब वो है जिसका रब अल्लाह है, या वो कहे भाई मेरी अकल में नहीं आ रही आप समझाएं, धौंस में ना आए। आपको पता है कि हमने 40 साल वहां पे पढ़ा है तब हम इस नतीजे में पहुंचे जो हम आपको बता रहे हैं, बड़ी बारीकियां हैं, अल्लाह को बारीकियां नहीं पता थी कि आने वाले जमानों में इतनी बारीकियां आएंगी कि मेरी आयतें ही बदल जाएंगी, मेरी आयतें एक्सपायर हो जाएंगी। ये हर मसलक में ये बीमारी है, अपने बुजुर्ग परस्ती की जो बीमारी है हर मसलक में, और इतनी फिर अंधाधुन परस्तिश करते हैं कि एक बंदा उन्हें कह रहा है तुम्हारी शक्ल है अल्लाह से डायरेक्ट बात करने की, सूरह फातिहा का इनकार हो गया, आयात कुरान मैं करीब हूं मैं जवाब देता हूं मुझे पुकारो, ठीक है ये सारी साइड पे हो गई, उसकी बात पर नारा लग रहा है जो उसने खिलाफ कुरान बात की है उस पर नारा लग रहा है, तो फिर और क्या?

तवक्को की जा सकती है कि जब अच्छे भले पढ़े लिखे समझदार सारा कुछ इतने ज्यादा कुरान मजीद के बारे में फारिग हो जाए समझने से, उन्हें पता ही ना क्या बोला जा रहा है, तो फिर बात खत्म हो गई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। माजरत चाहता हूं कि आज जो है वो थोड़ी इस तरफ बात ज्यादा चली गई, कभी कभार ऐसा हो भी जाया करेगा और इंशाल्लाह आप उज़्र को कबूल भी करेंगे, इसलिए कि बाज़ दफ़ा इलेक्ट्रिक शॉक्स की ज़रूरत पड़ती है दिल को दोबारा धड़कना शुरू करने के लिए, ठीक है ना, उसको झटके देने पड़ते हैं। कि बिल्कुल जो हमारे मुआशरे में कुरान के बारे में ऐसा ही रवैया, लिहाजा झटके देने की ज़रूरत होती है। खुदावंद आलम हमें तौफीक दे कि हम खुद को इस किताब से जोड़ सकें। अलिफ लाम मीम के बाद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिका दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होता है अरबी जुबान, यानी वो, ये अरबी जुबान में कहते हैं हाजा, वो इशारा करने के लिए क्या कहते हैं, ज़ालिका, हाजा दिस इंग्लिश में, और ज़ालिका दैट जो जरा दूर होता है। क्यों फरमाया ज़ालिकल किताब, जबकि जो भी पढ़ रहा है उसके सामने पड़ी हुई है, जो भी इस किताब को पढ़ रहा है उससे करीब है, दूर नहीं है, दूर क्यों कहा गया? ये अरबी जुबान के जो इल्म मानी बयान जिसे कहते हैं फसाद और बलागत का जो तरीका होता है जुबान का, उसमें ये पढ़ाया जाता है कि जब नज़दीक बैठे हुए के लिए दूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो इससे उसकी अजमत बयान करना मुराद होती है, यानी है तुम्हारे करीब लेकिन अगर इसकी अजमत बयान करूं तो तुम बहुत पीछे हो, ये बहुत ऊंचा है, ठीक है। मसलन फर्ज करें कि इधर स्टेज सेक्रेटरी खड़ा हो और इधर कोई बहुत ही बड़ी शख्सियत बैठी हो, ठीक है, तो वो उसके बिल्कुल साथ बैठा हुआ है लेकिन वो क्या कहता है अनाउंसमेंट के वक्त, अब मैं उस शख्सियत को बुला रहा हूं। ये उस किस लिए कहता है? ये नहीं कहता अब मैं इस शख्सियत को बुला रहा हूं, इसमें जरा अहमियत कम है, अब मैं इसको बुला रहा हूं, अब मैं उस हस्ती, ये उस हस्ती उसकी अजमत जहनों में डालती है, तवज्जो फरमा रहे, ये बिल्कुल उसी तरह की अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट है, ठीक है। ज़ालिकल किताब, ये जो अजमतों वाली इतनी बुलंद किताब है, इस किताब की बातों में ला रैब फी, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, शक भी अरबी का लफ्ज है और रैब भी अरबी का लफ्ज है, और एक और लफ्ज भी है उसे कुरान ने इस्तेमाल किया है मिरिया, ठीक है, अल्हक मिन रब्बिक फला तकुनन मिनल मुमतरीन, हक तेरे रब की तरफ से है मुमतरीन, यानी वो जो मिरिया का शिकार होते हैं उसमें से ना हो जाना। ये तीनों शक है, लेकिन शक रैब भी शक है और वो मिरिया भी शक है। अभी मिरिया को छोड़ दे, बाद में हम बात करेंगे, अभी चूंकि बात यहां पर रैब की आई, रैब एक खास किस्म के शक को कहते हैं कि जिसमें बंदा शक का शिकार भी होता है लेकिन सामने वाले पर तोहमत भी लगाता है, तवज्जो फरमा रहे हैं। इसका माना समझने के लिए कुरान में इसका एक जगह इस्तेमाल अभी सूरह बकरा के इब्तिदा में ही है, व इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, अगर जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है तुम उसके बारे में फी रैबिन, रैब में हो। ये रैब क्या था? कुफार शक भी करते थे और रसूलुल्लाह पर तोहमत भी लगाते थे कि झूठ बोलता है, अल्लाह पे झूठ बांधा है, शायर है, फलान है। बस रैब वो शक होता है कि जो इंसान को कुछ फिर करवाता भी है या सामने वाले पे इल्जाम लगाता है या उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, हरकत में रहता है, एक इज़्तिराब की शक्ल में भी रहता है। बाज शक होते हैं वो इतने अनइम्पॉर्टेंट होते हैं कि हमें शक होता है पता नहीं है या नहीं, लेकिन हमें क्या, नहीं है तो नहीं, है तो है, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन रैब वो होता है जिसके बारे में
बंदा इज़्तिराब का शिकार रहता है, कभी तोहमत लगाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, एक

हरकत की हालत में रहते हैं। यहां पर हम क्या कहेंगे, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब की बातों में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर गलत होने की तोहमत लगाई जा सके, जिसके बारे में इंसान के दिलों में इज़्तिराब पैदा हो। ठीक है, ये इसका मैंने जरा खोल के माना बयान किया। अब हम सादा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये वो किताब है जिसमें

पढ़े, खुदा को भी ना मानता हो, इसको पढ़ने से उसे ये पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहां पहुंचाना चाहता है, इसकी नजर में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है, इसका ये जो निजाम देता है वो निजाम बता देगा, रास्ता दिखा देगा। लेकिन गारंटी नहीं है कि उसको रास्ते पर चलेगा। हो सकता है कुरान मजीद में पोस्ट डॉक्टरेट करके बैठा हो, कई मकाले लिख के बैठा हो, रिसर्च करके बैठा हो, लेकिन एक टके का अमल भी ना करता हो कुरान पर। हो सकता है कि हुदल्लिन्नास सबको रास्ता दिखा देगा, हुदल्लिल्मुत्तकीन जो अगला है उस रास्ते पर चलना, ये हिदायत का दर्जा किसे मिलेगा? साहिबान तकवा को, साहिबान तकवा को। और तकवा के दर्जात बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जात भी हैं और बिल्कुल इब्तदाई दर्जात भी हैं। सबसे पहला स्टेप तकवा का क्या है? सबसे पहला स्टेप यह कि इंसान के अंदर यह ख्वाहिश हो कि मैंने बचना है, जिस बात से अल्लाह बचने का कहेगा मैंने इसलिए पढ़ रहा हूं। दूसरे लफ्जों में अमल करूंगा जो इधर से पता चलेगा, जो इस इरादे से पढ़ेगा उसको वो तीसरी तौफीक मिलेगी चलने की, और जिसका इरादा सिर्फ अपनी मालूमात आम्मा में इजाफे का है, उसने कोई इम्तिहान दे के उसमें नंबर लेने, जिसमें कुरान की कुछ आयात भी शामिल है मिसाल के तौर पर, जनरल नॉलेज का कोई टेस्ट देना कुरान के बारे में, इसलिए नहीं पढ़ रहा इसको कि मैंने अमल करना है, तो ये हुदल्लिन्नास तो होगा, उस कैटेगरी में तो आ जाएगा। हुदल्लिल्मुत्तकीन यानी रास्ता देख तो लेगा, रास्ते पे चलने की कोई गारंटी नहीं है। रास्ते पे वो चलेंगे जिनके दिलों में चलने की ख्वाहिश है, बुराइयों से वो बचेंगे जो चाहेंगे अल्लाह मुझे बताए क्या बुराई है मैं उससे बचूंगा, खुदाया मुझे बता क्या अच्छाई है मैं वो करूंगा, मुझे बता क्या बुराई है मैं उससे बचूंगा। जब इस इरादे से पढ़ा जाएगा हुदल्लिल्मुत्तकीन का ये माना है, और हुदल्लिन्नास का वो माना है। बस हुदल्लिन्नास सेकंड माना है हिदायत का, रास्ता दिखा देना। हुदल्लिल्मुत्तकीन तीसरा है, तीसरा माना है उस रास्ते पर चलने की तौफीक। इसके लिए तकवा जरूरी है, यानी वो ख्वाहिश जरूरी है कि खुदाया जो तू बताएगा मैं वो करूंगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।